वेलकम अगेन, आप सुन रहे हैं एक गधे की आत्मकथा बाय कृष्ण चंद्र। मैं कह रहा हूँ ओ, ईडन, आइजनहावर, बुलगानीन फिर मुलाकात करेंगे और वह कह रहे हैं आहा, हजरतगंज में दिलीप कुमार और निम्मी की नई फिल्म आ रही है। मैं कह रहा हूँ चच, सिकंदरिया की हवाई दुर्घटना में 12 मुसाफिर मर गए और वह कह रहे हैं बाप रे बाप, सोने का भाव फिर बढ़ गया है। बस इसी प्रकार हमारा यह सिलसिला चलता रहता, यहाँ तक कि मेरा मालिक ईंटें गिनकर और मिस्त्री के हवाले करके वापस आ जाता और मेरी पीठ पर जोर से एक कोड़ा मारकर मुझे ईंटें धोने के लिए ले जाता, लेकिन बैरिस्टर साहब मुझे कुछ न कहते। दूसरे फेरे में जब मैं वापस आता तो वह स्वयं समाचार पत्र का अगला पन्ना उठाकर मुझे दे देते और यदि मैं पूरा पढ़ चुका होता तो भीतर लाइब्रेरी से कोई पुस्तक निकाल लाते और जोर जोर से पढ़ना शुरू कर देते। यह जो मैं पढ़ना और बोलना सीख गया हूँ तो इसे सैयद साहब का ही चमत्कार समझिए या उनकी कृपा दृष्टि, क्योंकि सैयद साहब को समाचार पत्र पढ़ते हुए खबरों पर बहस करने और पुस्तकों को ऊंचे स्वर में पढ़ने तथा पढ़ते हुए उन पर टिप्पणी करने की बुरी आदत थी। यहाँ जिन स्थान पर वह कोठी बनवा रहे थे उन्हें कोई व्यक्ति ऐसा न मिला जिससे वह ऐसी बहस कर सके। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने काम में व्यस्त था, बस मैं एक गधा उन्हें मिला। परंतु इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, वास्तव में वह केवल बातचीत करना चाहते थे, किसी से अपने मन की बातें कहना चाहते थे। गधे के बजाय खरगोश भी उनकी संगति में रहता तो महापंडित बन जाता। सैयद साहब मेरे प्रति बड़ा स्नेह प्रकट करते थे और प्रायः कहा करते थे, अफसोस तुम गधे हो, अगर आदमी के बच्चे होते तो मैं तुम्हें अपना बेटा बना लेता। सैयद साहब की कोई संतान न थी। खैर, करनी भगवान की यह हुई कि एक दिन सैयद करामत अली शाह की कोठी तैयार हो गई और मेरे मालिक को और मुझे भी वहां के काम से छुट्टी मिल गई। फिर उसी रात धब्बू कुम्हार ने ताड़ी पीकर मुझे डंडे से खूब पीटा और घर के बाहर निकाल दिया और खाने के लिए घास भी न दी। मेरा दोष यह बताया कि मैं ईंटें कम ढोता था और समाचार पत्र अधिक पढ़ता था और कहा मुझे ईंटें धोने वाला गधा चाहिए, समाचार पत्र पढ़ने वाला गधा नहीं चाहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा बाय कृष्ण चंद्र। कहीं मत जाइएगा, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालनपुर।

वेलकम अगेन, आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा बाय कृष्णचंद्र। रात भर भूखा प्यासा मैं धब्बू कुम्हार के घर के बाहर शीत में ठुठुरता रहा। मैंने निश्चय कर लिया कि एक दिन निकलते ही सैयद करामत अली साहब की कोठी पर जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि ईंटे धोने पर नहीं तो पुस्तकें ढोने पर ही मुझे नौकर रख लीजिए। शेक्सपियर से लेकर बेढम मूजी तक मैंने प्रत्येक लेखक की पुस्तकें पढ़ी है और जो कुछ मैंने उन लेखकों के संबंध में जानता हूँ वह कोई दूसरा गधा नहीं जान सकता। मुझे पूरी आशा थी कि सैयद साहब तुरंत मुझे रख लेंगे, लेकिन भाग्य की बात देखिए कि जब मैं सैयद साहब की कोठी पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि रातों रात कोठी पर फसादियों ने हमला कर दिया। सैयद करामत अली साहब को अपनी जान बचाकर पाकिस्तान भागना पड़ा। फसादियों में लाहौर के गंडासी फल विक्रेता भी थे, जिनके लाहौरी दरवाजे के बाहर फलों की बहुत बड़ी दुकान और मॉडल टाउन में एक आलीशान कोठी थी। इस हिसाब से एक आलीशान कोठी उन्हें यहाँ भी मिलनी चाहिए थी। सौ भगवान की कृपा से उन्हें सैयद करामत अली साहब की नई बनाई कोठी मिल गई। जब मैं वहां पहुंचा तो गंडासी लाइब्रेरी के समस्त पुस्तकें एक एक करके बाहर फेंक रहे थे और लाइब्रेरी को फलों से भर रहे थे। ये शेक्सपियर का सेट गया और तरबूजों का टोकरा भीतर आया, ये गालिब के दीवान बाहर फेंके गए और मलिहाबाद के आम भीतर रखे गए, ये खलील जिब्रान गए और खरबूजे आए। थोड़े समय के बाद सब पुस्तकें बाहर थी और सब फल भीतर। अफलातून के स्थान पर आलू बुखारे, सुकरात के स्थान पर सीताफल, जोस के स्थान पर जामुन, मोमिन के स्थान पर मौसम्बी, सैली के स्थान पर सहतूत, किट्स के स्थान पर ककड़िया, सुकरात के स्थान पर बादाम, कृष्णचंद्र के स्थान पर केले और लहमत के स्थान पर लीमू भरे हुए थे। पुस्तकों की यह दुर्गत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं उन्हें एक एक करके उठाकर अपनी पीठ पर लादने लगा। इतने में गंडासी अपनी फलों की लाइब्रेरी से बाहर निकल आए और एक नौकर से कहने लगे, इस गधे की पीठ पर सारी पुस्तकें लाद दो।

और एक फेरे में ना जाए तो 8-10 फेरे करके ये सब पुस्तकें एक लारी में भरकर लखनऊ ले आओ और नखास में बेच डालो। अतएव गंडासी के नौकर ने ऐसा ही किया। मैं दिन भर पुस्तकें लाद लाद कर लारी तक पहुंचाता रहा और जब शाम हो गई तो अंतिम पुस्तक की लारी भी पहुंच गई। तब कहीं गंडासी के नौकर ने मुझे छोड़ा। मेरी पीठ पर उसने जोर का एक कोड़ा जमाया और मुझे लात मार कर वहां से भगा दिया। मैंने सोचा जिस शहर में पुस्तकों तथा महापंडितों का ऐसा अनादर होता हो वह रहना ठीक नहीं, इसलिए मैंने वहां से प्रस्थान का संकल्प लिया। अपने शहर के दरो दीवार पर हसरत भरी निगाह डाली, घास के 2-4 तिनके तोड़कर मुंह में रखे और दिल्ली की ओर चल खड़ा हुआ। सोचा दिल्ली स्वतंत्र भारत की राजधानी भी है और कला विद्या राज्यों का राजनीति का केंद्र भी, वह किसी न किसी प्रकार गुजारा हो जाएगा। आप सुन रहे हैं एक गधे की आत्मकथा बाय कृष्णचंदर। कहीं मत जाइएगा, यही जुड़े रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर विद आरजे अंजलि।

हेलो हाय नमस्कार वेलकम अगेन। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम सुन रहे हैं एक गधे की आत्मकथा जो लिखी है कृष्ण चंद्र जी ने। उन दिनों दिल्ली चलो का नारा प्रत्येक छोटे बड़े व्यक्ति की जुबान पर था और एक तरह से मैं भी इस नारे से प्रभावित होकर दिल्ली जा रहा था, परंतु यह मालूम न था कि रास्ते में क्या विपत्ति आएगी। रास्ते में एक स्थान पर मैंने देखा एक सरहे

दाढ़ी रखे हुए एक छोटी सी गठरी बगल में दबाए एक छोटे से गांव से भागकर सड़क पर आ रहा था। मैंने सहानुभूति प्रकट करते हुए उसे अपनी पीठ पर सवार कर लिया और तेज तेज कदमों से चलने लगा ताकि उस गांव के फसादी उसका पीछा न कर सके। और हुआ भी यही, मैं बहुत आगे निकल गया और मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ कि चलो मेरे कारण एक निर्दोष की जान बच गई। इतने में क्या देखता हूँ कि बहुत से फसादी रास्ता रोके खड़े थे। एक फसादी ने हमारी ओर देखकर कहा, देखो इस बदमाश को, न जाने किस बिचारे का गधा चुराए ले जा रहा है। रई ने अपनी जान बचाने के लिए बहुत कुछ कहा मगर किसी ने एक न सुनी। उसे फसादियों ने मौत के घाट उतार दिया। मुझे एक फसादी ने बांध लिया और अपने घर की ओर चला। जब हम आगे बढ़े तो रास्ते में कुछ गांव पड़ते थे। यहाँ पर कुछ एक दूसरी ओर से फसादी आगे बढ़े। उस बिचारे ने भी अपनी जान बचाने के लिए बहुत कुछ कहा लेकिन किसी ने एक न सुनी और उसका सफाया हो गया और मैं एक मौलवी साहब के हिस्से में आया। रास्ते में मैंने मौलवी साहब के आगे बहुत अनुयायी विनय की, मैं हजरत मुझे छोड़ दीजिए। मौलवी, यह कैसे हो सकता है, तुम माले गनीमत हो। मैं, हुजूर मैं माले गनीमत नहीं हूँ, गनीमत यह है कि मैं एक गधा हूँ वरना अब तक मारा गया होता। मौलवी ने कहा, अच्छा यह बताओ तुम हिंदू हो या मुसलमान, फिर हम फैसला करेंगे। मैं ठीक ठीक तो कह रहा हूँ, न मैं मुसलमान हूँ न मैं हिंदू हूँ, मैं तो गधा हूँ। मौलवी ने कहा, तू बहुत बदमाश मालूम होता है, हम घर जाकर तुझे ठीक करेंगे। मौलवी साहब ने मुझे मस्जिद के बाहर एक खूंटे से बांध दिया और स्वयं भीतर चले गए। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा। कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए रेडियो पालमपुर के साथ।

मौलवी साहब ने मुझे मस्जिद के बाहर एक खूंटे से बांध दिया और स्वयं भीतर चले गए। मैंने मौका गनीमत जाना और रस्सी तोड़कर वहां से निकल भागा। ऐसा भागा कि मीलों तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब मैंने यह निश्चय कर लिया था, इन संकीर्ण हृदय व्यक्तियों के झगड़े से एक गधे का क्या संबंध। अब मैं किसी की भी सहायता नहीं करूंगा, अतएव अब मैं दिन भर किसी वृक्ष की घनी छाया में पड़ा रहता या किसी जंगल अथवा मैदान में घास चरता रहता और रात होने पर अपनी यात्रा शुरू कर देता। इसी प्रकार चलते चलते बड़ी मुश्किल से कहीं 6-7 महीनों के बाद दिल्ली पहुंचा। दिल्ली के भूगोल का वर्णन संक्षिप्त रूप से करता हूँ ताकि दिल्ली आने वाले यात्री मेरी जानकारी से पर्याप्त लाभ उठा सके और धोखा न खाए। इसके पूर्व में शरणार्थी, पश्चिम में शरणार्थी, दक्षिण में शरणार्थी और उत्तर में शरणार्थी बसते हैं। बीच में भारत की राजधानी है और इसमें स्थान स्थान पर सिनेमा के विभिन्न औषधियों और शक्तिवर्धक गोलियों के विज्ञापन लगे हुए हैं, जिससे यहाँ की सभ्यता तथा संस्कृति की महानता का अनुभव होता है। एक बार मैं चांदनी चौक से गुजर रहा था कि मैंने एक सुंदर युवती को देखा जो तांगे में बैठी पायदान पर पांव रखे अपनी सुंदरता के नशे में डूबी चली जा रही थी और पायदान पर विज्ञापन चिपका हुआ था। मैं इस दृश्य के तीखे व्यंग से प्रभावित हुए बिना न रह सका और बीच चांदनी चौक में खड़ा होकर काकाहा लगाने लगा। लोग राह चलते चलते रुक गए और एक गधे को बीच सड़क में काकाहा लगाते देख कर हंसने लगे। वे बेचारे मेरी दुष्ट आवाज पर हंस रहे थे और मैं उनकी दुष्ट सभ्यता पर कह कहे लगा रहा था। इतने में एक पुलिस के संतरे ने मुझे डंडा मारकर टाउन हॉल की ओर धकेल दिया। इन लोगों को मालूम नहीं कि कभी कभी गधे भी इंसानों पर हंस सकते हैं। दिल्ली में आने वालों को यह याद रखना चाहिए कि दिल्ली में प्रवेश करने से बहुत से दरवाजे हैं, दिल्ली दरवाजा, अजमेरी दरवाजा, तुर्कमान दरवाजा इत्यादि, परंतु आप दिल्ली में इनमें से किसी दरवाजे के रास्ते भीतर नहीं आ सकते, क्योंकि इस दरवाजों के भीतर प्राय गाय, भैंसे, बैल बैठे रहते हैं या फिर पुलिस वाले चारपाइयां बिछाए ऊँगते रहते हैं। हाँ, इन दरवाजों के दाएं बाएं बहुत सी सड़कें बनी हुई है जिन पर चलकर आप दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं। अंग्रेजों ने दिल्ली में भी एक इंडिया गेट बनाया है, लेकिन इस गेट से भी गुजरने का कोई रास्ता नहीं है। दरवाजे के इर्द गिर्द घूम फिर कर जाना पड़ता है। संभव है दिल्ली के घरों में भी थोड़े दिनों में ऐसे दरवाजे लग जाए, फिर लोग खिड़कियों से कूद कर घरों में प्रवेश किया करेंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा। कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए मेरे साथ, आरजे अंजलि के साथ।

दिल्ली में नई दिल्ली है और नई दिल्ली में कन्नॉट प्लेस है। कन्नॉट प्लेस बड़ी सुंदर जगह है। शाम के समय मैंने देखा कि लोग लोहे के गधों पर सवार होकर इसकी गोल सड़कों पर घूम रहे हैं। यह लोहे का गधा हमसे तेज भाग सकता है परंतु हमारी तरह आवाज नहीं निकाल सकता। यहाँ पर मैंने बहुत से लोगों को भेड़ की खाल के बालों के कपड़े पहनते हुए देखा है। स्त्रियां अपने मुंह और नाखून रंगती है और अपने बालों को इस प्रकार ऊंचा करके बांधती है कि दूर से वो बिल्कुल गधे के कान मालूम होते हैं। अर्थात इन लोगों को गधे बनने का कितना शौक है यह आज मालूम हुआ। कन्नौट प्लेस से टहलता हुआ मैं इंडिया गेट चला गया। यहीं चारों ओर बड़ी सुंदर घास बिछी थी और उसकी धूप तो अत्यंत स्वादिष्ट थी। मैं 2-3 दिन से तो भूखा था ही, बड़े मजे से मुंह मार मार कर चलने लगा। इतने में एक जोर का डंडा मेरी पीठ पर पड़ा। मैंने घबरा कर देखा, एक पुलिस का सिपाही क्रोध भरे स्वर में कह रहा था, यह कमबख्त गधा यहाँ कैसे घुसा? मैंने पलट कर कहा, क्यों भाई, क्या गधों को नई दिल्ली में आने की मनाही है? मुझे बोलता देख कर वह सटपटा गया। शायद उसने आज तक किसी गधे को बोलते नहीं सुना था। फटी फटी आंखों से मेरी ओर देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसका आश्चर्य कुछ कम हुआ तो मुझे रस्सी से खींच कर थाने ले गया। थाने में ले जाकर उसने मुझे कांस्टेबल के सामने खड़ा कर दिया। हेड कांस्टेबल ने बड़े आश्चर्य से उसकी ओर देखकर कहा, इसे यहाँ क्यों लाए हो रामसी? रामसी ने कहा, हुजूर यह एक गधा है। गधा तो है, ये तो मैं भी देख रहा हूँ, मगर तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? हुजूर यह इंडिया गेट पर घास चर रहा था। अरे घास चर रहा था तो क्या हुआ, तुम्हारी बुद्धि तो कहीं घास चरने नहीं चली गई, इसे यहाँ क्यों लाए हो? ले जाकर कांजी हाउस में बंद कर देते, इस बेजबान जानवर को थाने में लाने की क्या जरूरत थी? रामसी ने रुकते रुकते मेरी और विजय दृष्टि से देखकर कहा, हुजूर यह बेजबान नहीं है, यह बोलता है। अब की हेड कांस्टेबल बहुत हैरान हुआ, लेकिन पहले तो उसे विश्वास ना आया, फिर बोला, रामसी तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? नहीं नहीं यह बिल्कुल ठीक कहता है, हेड कांस्टेबल

विल साहेब, मैंने धीरे से सिर हिलाकर कहा। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा। कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए आज अंजलि के साथ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

हेड कांस्टेबल अपनी सीट से उछला, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। वास्तव में उसका आश्चर्य अनुचित भी नहीं था, क्योंकि नई दिल्ली में ऐसे तो बहुत लोग होंगे जो इंसान होकर गधों की तरह बातें करते हो, लेकिन एक

ऐसा गधा जो गधा होकर इंसानों की तरह बातें करे, हेड कांस्टेबल ने आज तक देखा या सुना नहीं था। इसलिए बेचारा चकरा गया। उसकी समझ में न आया कि क्या करे। आखिर सोच सोच कर उसने रोजनामचा खोला और रपट दर्ज करने लगा। उसने मुझसे पूछा, तुम्हारा नाम? गधा। बाप का नाम? गधा। दादा का नाम? गधा। यह क्या बकवास है, हेड कांस्टेबल ने क्रोध पूर्वक कहा। सबका एक ही नाम है, यह कैसे हो सकता है? अब मुझे देखो, मेरा नाम ज्योति सिंह है, मेरे बाप का नाम प्यारे लाल था, मेरे दादा का नाम जीवन दास था। हमारे यहाँ नाम बदलते रहते हैं। तुम जरूर झूठ बोल रहे हो। ज्योति से मुझे संदेह की नजरों से देखने लगा। मैंने कहा, हुजूर, मैं झूठ नहीं बोलता, सच कहता हूँ कि हमारे यहाँ नाम नहीं बदलते। जो बाप का नाम होता है वही बेटे का और वही पोते का। इससे क्या लाभ? ज्योति सिंह ने पूछा। इससे वंशावली मिलाने में सुविधा होती है। उदाहरण स्वरूप, क्या आप मुझे अपने परदादा के परदादा का नाम बता सकते हैं? मैंने ज्योति सिंह से पूछा। नहीं, ज्योति सिंह ने अफसोस प्रकट किया, मगर मैं बता सकता हूँ। आपके यहाँ वह आदमी बड़ा खानदानी समझा जाता है जो आज के 400, 600, 800, 1600 साल पहले अपने पुरखे का नाम बता सके। देखिए, मैं आपको आज से 16 लाख साल पहले के अपने पुरखे का नाम बता सकता हूँ, श्री गधा। बोलिए, फिर क्या हम गधे आपसे बेहतर खानदान के हुए या नहीं? ज्योतिषी ने बड़े ध्यान से मेरी ओर देखा। उसका संदेह और बढ़ गया। उसे धीमे स्वर में रामसी के कान में कानाफूसी करते हुए कहा, मुझे यह शख्स बड़ा खतरनाक मालूम होता है। हो ना हो, यह कोई विदेशी जासूस है जो गधे के लिबास में नई दिल्ली के चक्कर लगा रहा है। रामसी ने कहा, हुजूर, मैं तो समझता हूँ इसकी खाल उतरवा कर देखना चाहिए, भीतर से खुफिया जासूस निकल आएगा, फिर हम इसे फौरन गिरफ्तार कर लेंगे। ज्योतिषी ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, लेकिन इसके लिए सब इंस्पेक्टर चानन राम की आज्ञा लेना बहुत जरूरी है। चलो इसे उनके सामने ले चले। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा जो लिखी है कृष्णचंद्र जी ने। कहीं जाइएगा नहीं, यहीं जुड़े रहिए मेरे साथ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

0: कान में भी कुछ भनक पड़ गई थी, लेकिन मैं कान लपेटे चुप रहा और उन दोनों के साथ भीतर के कमरे में सब इंस्पेक्टर चानन राम के सामने चला। चानन राम की मूछे बिच्छू के डंक की तरह खड़ी थी और उसका सुर्ख चेहरा हर समय तमतमाया रहता था। चानन राम को आज तक किसी ने हंसते या मुस्कुराते हुए नहीं देखा था, इसलिए लोग उसे एक योग्य पुलिस अफसर समझते थे। चानन राम ने उसकी पूरी बात सुनकर मेरी ओर घूर कर देखा और कहा,
1: तो तुम पाकिस्तानी के जासूस हो।
0: मैं चुप रहा। चानन राम ने जोर से मेज में मुक्का मार कर कहा,
1: समझ गया, तुम रूस के एजेंट हो।
0: मैं फिर चुप रहा। चानन राम ने दांत पीसते हुए कहा,
1: कमबख्त, बदमाश, कम्युनिस्ट, मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा, वरना जल्दी बताओ तुम कौन हो।
0: यह कहकर चानन राम मुझे मुक्को लातों और ठोकरों से मारने लगा। मारते मारते जब वह बिल्कुल बेदम हो गया तो मैंने जोर से एक दर्द भरी आवाज की। आवाज करते ही वह रुक गया और पहले मेरी ओर आश्चर्य से देखकर और फिर अत्यंत क्रोध से ज्योति सी और राम सी की ओर देखकर बोला,
1: अरे यह तो बिल्कुल गधा है, और तुम कहते हो यह कोई विदेशी जासूस है, तुम मुझसे मजाक करते हो, मैं अभी तुमको डिसमिस करता हूँ।
0: राम सी और ज्योति सी दोनों भय से थर थर कांपने लगे। हाथ जोड़कर बोली,
2: हुजूर अभी यह बाहर के कमरे में बोल रहा था, साफ साफ बोल रहा था, बिल्कुल इंसानों की तरह।
1: तुमने सपना देखा होगा या काम करते करते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होगा। जाओ इस गधे को मेरे सामने से ले जाओ और कांजी हाउस में बंद कर दो। अगर 3-4 दिन में इसका मालिक न आए तो नीलाम कर देना।
0: मैं खुशी खुशी बाहर आया, मेरी चाल काम कर गई। अगर मैं भूलता तो वे लोग निश्चय ही मेरी खाल उधेड़ कर देखते कि भीतर कौन है। इसके बाद 3-4 दिन तो क्या, एक हफ्ते तक कोई मालिक न आया, फिर मुझे नीलाम कर दिया। अब के मुझे रामू धोबी ने खरीद लिया, जो यमुना पार कृष्णनगर में रहता था। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर गधे की आत्मकथा, जो लिखी है कृष्णचंद्र जी ने। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी आपसे, तो जुड़े रहिए रेडियो पालमपुर के साथ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार जो हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
3: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
3: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
2: ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
3: और जीएल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का।
2: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
3: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फूल ट्यूलिप की और जाना था इसकी रोचक बातों को
2: जी।
3: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
2: आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है जिसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
3: क्या नाम है भला?
2: रजनीगंधा।
3: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है विमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये दो शब्दों के संयोग से बना है ना, रजनी और गंधा।
2: जी चलिए श्रोताओं, इसे और गहराई से समझते हैं। रजनी यानी रात और रात्रि और गंधा यानी सुगंधित। इस फूल की रोचक बात यह है कि रात में सबसे अधिक महकता है।
3: जी, दिन की तुलना में इसकी खुशबू रात को कई गुना बढ़ जाती है।
2: जी,
3: इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर जैसे
2: विवाह, सजावट, पूजा और स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प गुच्छ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित हैं। अजीत जी, अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
3: विमलेश जी, जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है।
2: जी, मूल रूप से मेक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
3: लेकिन विमलेश जी, मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है? कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
2: अजीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने।
3: जी,
2: बात यह है कि प्रकृति ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और पतंगों को आकर्षित करना।
3: वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है।
2: इतना ही नहीं, एक कारण और भी है। अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है।
3: भला वो और क्या बात है?
2: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उड़ जाती है, लेकिन रात की ठंडी और नम हवा खुशबू को दूर तक फैलाती है।
3: जी, ये बात तो है।
2: इसकी तेज खुशबू रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है।
3: बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने विमलेश जी। कई संस्कृतियों में श्रोताओं इसे शांति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है।
2: जी
3: विमलेश जी, एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि इत्र या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है।
2: जी,
3: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है।
2: जी जी जी, रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम करने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
3: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी

0: खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत प्रस्तुतीकरण है, जिसमें पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह।
2: इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह की वीर गाथा को विस्तार से बताया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया था।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परमवीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।
1: अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। साथियों, ये पंक्तियां महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, जो भारत भूमि के महात्म्य को बड़ी सजीवता से उजागर करती हैं।
2: सच है कि भारत की मधुमेह माटी ने ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, जिनकी वीरता की चर्चा जितनी की जाए कम है। आज हम एक ऐसे ही वीर सैनिक की चर्चा करेंगे, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
1: भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते, लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं, जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
1: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई सन्नोटा श्री कृष्ण कॉलेज बुलंदशहर से पूरी की।
2: उनके पिता रामकरण सिंह 11 कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही थे और 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो अपने पिता से बहुत प्रभावित थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब पिताजी छुट्टी पर घर आएं और वो उनसे भारतीय सेना की वीरता की कहानियां सुनें।

0: एक दिन की बात है, वो घर पर ही थे। उनके बड़े भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे और माता घर पर ही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई।
1: बेटा योगेंद्र, जरा देखो तो कौन आया है। अरे कौन है?
2: बहन जी, डाकिया।
1: अच्छा, खोलते हैं भैया।
3: जी कहिए। आपके भाई के नाम एक जरूरी चिट्ठी आई है रजिस्ट्री से। वो घर में है क्या?
4: नहीं, वो तो भैया तो अभी घर पर नहीं है।
3: तो कोई बड़ा है घर में?
4: हाँ, घर पर माता जी है ना।
3: जी बुलाइए।
5: माँ।
1: हाँ।
5: भैया के नाम से रजिस्ट्री आई है।
1: अच्छा, आ रही हूँ। जी कहिए।
3: ये जरूरी सरकारी चिट्ठी आई है आपके बेटे जितेंद्र के नाम। ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए।
1: अरे ये चिट्ठी तो फौज के दफ्तर से आई है, जरा देखो तो।
5: माँ, माँ,
6: लो माँ, मैं आ गया। आपने जो काम दिया था ना, वो भी हो गया।
1: अच्छा क्या बेटा, तू आ गया। ले बेटा देख तो जरा, तेरे नाम ये चिट्ठी आई है।
6: चिट्ठी? अरे वाह, ये तो सेना के दफ्तर से आई हुई लगती है माँ, जरा देखो तो।
1: हाँ।
6: माँ, माँ, माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ, सेना में मेरा चयन हो गया है। मुझे कहा गया है कि मैं एक महीने के अंदर क्षेत्रीय सेना कार्यालय में रिपोर्ट करूं।
5: अरे वाह,
1: बधाई हो बेटा, बधाई हो।
5: ऐसे नहीं, बधाई हो भैया, बधाई हो भैया।
6: अरे योगेंद्र।
1: अरे बेटा, अब तो ये घर फौजी का नहीं, फौजियों का हो गया है, फौजियों का। तुम्हारे पिता फौज में हैं और अब तुम भी फौज में।
6: हाँ माँ।
4: और माँ, इन दोनों के बाद मैं भी फौज में ही जाऊंगा। इस गांव में एक ही घर से तीन तीन फौजी होंगे।
1: हाँ हाँ, जरूर बेटा जरूर, ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए।
4: ऐसे नहीं, आज तो घर में गुलाब जामुन बनेगा, रसगुल्ला बनेगा, बर्फी मिलेगी खाने को।
7: तो साथियों, बालक योगेंद्र जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उनके मन में सेना में जाने का चाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने सेना में अर्जी दी और पहले प्रयास में ही महज 16 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक महत्वपूर्ण प्लाटून में शामिल कर लिया गया। इस प्लाटून का नाम था घातक प्लाटून।
0: फिर आया 1999 का साल। कश्मीर के कारगिल में स्थितियां बिगड़ने लगी। मई महीने में एक स्थानीय चरवाहे द्वारा भारतीय सेना को सूचना दी गई कि कारगिल और आसपास के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है।
7: सेना ने जब इस सूचना की जांच की तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनका उद्देश्य था सियाचिन और कारगिल क्षेत्र से गुजरने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर कब्जा करके शेष भारत को कश्मीर के इस महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र से काट देना।
0: अब युद्ध अवश्यम्भावी हो गया था। 3 जुलाई को भारतीय सेना ने युद्ध की घोषणा की और बड़े पैमाने पर सैन्य कार्यवाही आरंभ कर दी। भारतीय सेना का मकसद था कारगिल, मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों से पाकिस्तानी चौकियों को हटाना। भारतीय वायुसेना को भी चौकस कर दिया गया कि वो हवाई हमलों को अंजाम दे सकें।
7: सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी क्योंकि उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थीं। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार, मिसाइल, रॉकेट और विमान भेदी तोपें थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी।

0: इसके विपरीत भारतीय सेना की स्थिति घाटियों में होने की वजह से कमजोर थी, क्योंकि ऊंची जगहों से पाकिस्तानी भारतीय सेना को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना के लिए ऐसी स्थिति में युद्ध करना बहुत कठिन था, इसलिए पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करने के लिए अधिकांश हमलों में रात का समय चुना गया, जिस समय तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कुमाऊं रेजिमेंट की घातक के नाम से जानी जाने वाली कमांडो प्लाटून का हिस्सा थे। दिनांक 4 जुलाई 1999। उनकी कमांडो प्लाटून को टाइगर हिल पर मोर्चा बांधे हुए दुश्मनों की 3 चौकियों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। टाइगर हिल पर दुश्मनों की चौकियां लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर थीं।
0: चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, दुश्मन के बंकरों तक पहुंचने के लिए उनके पास रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उनकी प्लाटून ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया।
2: साथियों, बहुत संभल के, अभी भी सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत है, इसलिए हम दुश्मनों द्वारा देखे जा सकते हैं। कहीं उन्हें पता चल गया तो हम सीधे उनके निशाने पर आ सकते हैं।
3: जी साहब, जी साहब।
2: चलो हम पहाड़ी ढाल की दूसरी तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
3: चलो साथियों।
0: वो धीरे धीरे बर्फ की खड़ी ढाल पर चढ़ ही रहे थे कि तभी दुर्भाग्यवश शत्रु ने उन्हें देख लिया और प्लाटून पर रॉकेट और मशीन गनों से उन पर आक्रमण कर दिया।

0: इतना जबरदस्त था कि कमांडर और दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को भी गले और कंधे में 3 गोलियां लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अभी भी 60 फुट की चढ़ाई बाकी थी। अब उन्हें आभास हो गया था कि यही समय है देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की भावना को प्रकट करने का। यही समय है मातृभूमि के प्रति अपना कर्ज और फर्ज अदा करने का। दृढ़ निश्चय के साथ वो ऊपर चढ़ते चले गए।
0: शेष 60 फुट चढ़कर वो टाइगर हिल के शीर्ष पर पहुंचे और रेंगते हुए पहले बंकर में घुस गए और हथगोला फेंककर तुरंत 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
2: कालिका माता की जय।
1: दुश्मन इस आकस्मिक आक्रमण से स्तब्ध रह गया। अब वो दूसरे बंकर की ओर बढ़े और सीधे बंकर में घुस गए। यहां हाथ से हाथ का आमने सामने का युद्ध हुआ। यहां भी राइफल की बट और हाथ गोलों से उन्होंने 4 और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।
0: घुटने में ग्रेनेड लगने से घायल और कुल मिलाकर अपने शरीर में 15 गोलियां लगने के बाद भी यहां तक कि वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। इस हालत में भी ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों से अपूर्व शौर्य के साथ लड़ते रहे।

0: इतने में ग्रेनेडियर योगेंद्र के साथी भी शिखर पर पहुंच गए थे। फिर तो जैसे वहां तांडव नृत्य होने लगा। घंटे भर के भीषण युद्ध के बाद प्लाटून टाइगर हिल पर कब्जा करने में सफल रही और वहां भारत का परचम लहरा दिया।
1: भारत माता की जय!
2: भारत माता की जय!
0: ये शानदार विजय ग्रेनेडियर योगेंद्र के बिना संभव नहीं थी। इस तरह से ऑपरेशन टाइगर हिल समाप्त हुआ। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को टाइगर ऑफ टाइगर हिल की संज्ञा दी गई।
3: उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाद में पता चला कि वो जीवित हैं और सेना के एक अस्पताल में जख्मों के भरने और स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल टाइगर हिल अभियान में एक और सैनिक शहीद हुए थे, उनका भी नाम योगेंद्र सिंह यादव था। इन शहीद योगेंद्र सिंह यादव को सेना मेडल से सम्मानित किया गया।
0: बाद में तत्कालीन सेना अध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने आर्मी अस्पताल का दौरा करके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव से मुलाकात की और उन्हें देश के सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने की सूचना दी। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ।
3: योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया है। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस असीम शौर्य के दृढ़ निश्चयी समर नायक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है।
4: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आरएस रघु, ध्वन्यांकन विकास सांगवान और शानु मुक्सीम, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, आलेख अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: तमे सांभळी रह्या छो 90.4 FM रेडियो पालनपुर। हूँ प्रियराज सौ बाळ मित्रों नुं स्वागत करू छू बाळ सभामां।
8: नमस्कार मित्रों, रेडियो पालनपुर में हूँ डॉक्टर भावेश पंड्या एक नवी वार्ता साथे। आज ना अपना वार्ता नु मुख्य कैरेक्टर छे भोगीलाल। गामना युवान भोगीलाल, धनसुराना भोगीलाल, शिक्षक भोगीलाल, मूल वतन साबरकांठा, पर नौकरी अर्थे धनसुरा स्थायी है।

0: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर। मैं हूं रुचि आपके साथ और आज एक नया दिन है, एक नया शो है। 90s के दौरान यू नो बॉलीवुड में ज्यादातर फिल्में फैमिली, प्यार, ट्रेडिशन और कल्चर पे बना करती थी। उस टाइम पर बॉलीवुड वेंट ग्लोबल एंड रीच्ड वाइडर ऑडियंस, जिसकी स्टोरी लाइंस बहुत ही चैलेंजिंग होती थी। और तब का वो समय था जब फीमेल ओरिएंटेड रोल्स की एंट्री हुई। तो आज का शो उन खूबसूरत एक्ट्रेसेस के नाम होगा जिन्होंने अपने वर्सिटैलिटी और ग्रेस के साथ स्टीरियोटाइप्स तोड़े और बॉलीवुड हिस्ट्री में अपना नाम लिखा। और ग्रेस की बात करें तो सबसे पहले अगर कोई दिमाग में आता है तो वो है माधुरी दीक्षित। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन को शुरुआत में फिल्म्स करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, वो तो माइक्रोबायोलॉजी में डिग्री लेना चाहती थी, उनके पास डिग्री है भी, और वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट या फिर पैथोलॉजिस्ट बनना चाहती थी। ऐसे माधुरी ने कथक डांस भी सीखा हुआ है, 8 साल की ट्रेनिंग ली है, नो वंडर इसीलिए उन्हें डांसिंग क्वीन बुलाया जाता है। 1984 का वो समय था जब अबोध फिल्म से इन्होंने अपने करियर की, फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। ये फिल्म तो चली नहीं, लेकिन माधुरी जी को क्रिटिक्स से बहुत तारीफें मिली। और फिर क्या था, उनकी तकदीर की गाड़ी निकल पड़ी और एक टाइम आया जब वो 3-4 फिल्में एक ही साल में रिलीज करती थी। आपको पता है जब हम आपके हैं कौन फिल्म आई थी ना, उस समय माधुरी की फीस सलमान खान की फीस से 2.75 करोड़ ज्यादा थी। वाह, मतलब एक्ट्रेसेस का भी एक जमाना हुआ करता था। खैर आइए इसी बात पर शो की शुरुआत करते हैं इसी फिल्म के गाने के साथ, लता जी और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में, मौसम का जादू। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर आज ये 90s की दीवाज पे स्पेशल एडिशन मेरे आने रुचि के साथ।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर मैं हूं रुचि, आपके साथ वेलकम बैक। आज के इस रेट्रो बॉलीवुड शो में मैं बातें कर रही हूं 90s के कुछ ऐसी दीवाज के बारे में जिनके बिना हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री लिखी ही नहीं जा सकती थी। 90s में एक ऐसी भी एक्ट्रेस थी जिन्होंने ब्यूटी स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा और अपनी यूनिब्राउ पॉपुलर कर ली थी इन्होंने, जो अपने चेयरफुल, आउटस्पोकन, हैप्पी गो लकी नेचर के लिए जानी जाती थी। ऑफ कोर्स आप पहचान ही गए हैं, मैं बात कर रही हूं काजोल की। काजोल की फिल्मी दुनिया में एंट्री 1992 की बेखुदी फिल्म के साथ हुई थी, लेकिन उन्हें पहली कमर्शियल सक्सेस बाजीगर से मिली जब उन्हें पहली बार शाहरुख के साथ ऑन स्क्रीन पेयर किया गया था। और फिर क्या होना था, काजोल ने जब भी शाहरुख खान के साथ में फिल्में की हैं वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही हैं। वैसे काजोल के लिए सबसे टफ किरदार गुप्त फिल्म का था, क्योंकि उन्हें एक मीन ग्रे शेड का जो कैरेक्टर था वो प्ले करना था। लेकिन इसी रोल के कारण शी बिकेम द फर्स्ट वुमन एवर टू विन अ फिल्म फेयर फॉर अ नेगेटिव रोल। जहां दूसरी एक्ट्रेसेस के लिंकअप की खबरें सामने आती रहती थी, वहीं काजोल इन सबसे काफी दूर थी। कॉन्ट्रोवर्सीज इन्हें छू भी नहीं पाती थी। इनफैक्ट गुंडा राज फिल्म की शूटिंग के दौरान शी स्टार्टेड डेटिंग अजय देवगन और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई थी। उनकी शादी भी अजय देवगन से ही हुई विदाउट एनी कॉन्ट्रोवर्सीज। लोगों ने जरूर इनके अनलाइकली पेयरिंग को लेकर के काफी क्रिटिसिज्म जो था वो इन्हें दिया था, लेकिन इनके प्यार को किसी की परवाह नहीं थी। वैसे काजोल का लकी नंबर 5 है, इसीलिए 1995 में उनकी 5 फिल्म्स रिलीज हुई थी और सभी ब्लॉकबस्टर चाहे ना रही हो, लेकिन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे तो आज तक भी हम याद करते हैं। तो इसी फिल्म से आपको अगला गाना सुनाती हूँ, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में। हर लड़की ने अपने टीनेज में कभी ना कभी तो इस गाने पर डांस किया ही है। मैं हूँ रुचि, आपके साथ वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ। 90s की कुछ बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेसेस के बारे में, या यूं कहें कि डीवाज के बारे में आज यहां पर मैं और आप मिलकर के चर्चा कर रहे हैं। और जब हम डीवाज की बात करें तो श्रीदेवी जी का नाम सामने ना आए ऐसा कैसे हो सकता है। श्रीदेवी जी को दिल से याद करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि माधुरी दीक्षित और जूही चावला की भी अगर कोई इंस्पिरेशन थी बॉलीवुड में तो वो श्रीदेवी जी ही थी। श्रीदेवी जी ने राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन से लेकर के शाहरुख, सलमान तक ऑलमोस्ट सभी टॉप स्टार्स के साथ काम किया था। फिल्मों के साथ फैशन में भी वो काफी पॉपुलर थी। उनका आइकॉनिक चांदनी लुक मतलब फैशन का सीन ही चेंज कर गया था इंडिया में। सुना है डायरेक्टर यश चोपड़ा जी ने चांदनी के लिए पहले रेखा जी को ऑफर भेजा था, लेकिन सिलसिला फिल्म में उन्होंने चांदनी नाम का कैरेक्टर पहले ही कर लिया था तो उन्होंने मना कर दिया और खुद श्रीदेवी को उन्होंने ही रेकमेंड किया था इस रोल के लिए। और बताइए, ये जो एक कैरेक्टर था ये श्रीदेवी जी के लिए जैसे एक बेंचमार्क बन गया था। एक बार यश जी अपनी कार में ट्रैवल कर रहे थे और रास्तों पर सिर्फ एक्शन फिल्मों के पोस्टर्स लगे हुए थे। इट वॉज देन जब उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ बदलाव लेकर के आना है और अब थोड़ा सा रोमांटिक फिल्में भी, रोमांटिक कहानियां भी लोगों को सुनानी है, दिखानी है। एंड दैट इज वेन उनके दिमाग में चांदनी फिल्म का ख्याल आया था। इस फिल्म की इतनी बात हो रही है तो चलिए इसी फिल्म का गाना आपको सुनाऊंगी, श्रीदेवी जी का गाना। ऑफ कोर्स 90s की वन ऑफ द बिगेस्ट डीवाज। लेकिन उसके पहले लम्हे फिल्म से हरिहरन और लता दीदी की आवाज में अगला गाना कभी मैं कहूं। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो जारी है, मैं हूं रुचि आपके साथ। 90s की डीवाज के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, श्रीदेवी जी के बारे में बात कर रहे थे, उन्हीं के दो गाने अभी आपने सुने, और अब मैं 90s में सबसे क्विक सक्सेस जिन्हें मिली उनके बारे में बात करूंगी। नाम है इनका जूही चावला। जूही ने 1984 में मिस इंडिया का क्राउन जीता था। वैसे आप जानते हैं जूही भी कथक में ट्रेन थी, और वो भी 3 साल तक की इन्होंने ट्रेनिंग ली थी। ऑल्सो क्लासिकली ट्रेन्ड सिंगर भी रही है ये। लेकिन जूही इन सब के कारण नहीं, बल्कि अपने कॉमिक रोल्स और चीयरफुल पर्सोना के लिए बहुत पॉपुलर थी। लेकिन फिर भी एक बार इनके और आमिर खान के बीच में थोड़ी अनबन हो गई थी। हुआ कुछ यूं था कि इश्क फिल्म की शूटिंग के दौरान आमिर खान ने जूही चावला पर एक खतरनाक प्रैंक, एक बहुत ही बुरा मजाक किया था। जूही को यह बात अच्छी नहीं लगी थी और वो नाराज हो गई थी, और अगले दिन शूट पर ही नहीं आई, जिसके कारण उस दिन बहुत सारा लॉस हुआ था प्रोडक्शन टीम को। और आमिर खान काफी नाराज भी हो गए थे कि मैंने तो मजाक किया था, इसके ऊपर जूही इतना क्यों बुरा मान गई। कुछ दिन के बाद में इन दोनों के बीच में लेकिन ये प्रॉब्लम जो थी वो सॉर्ट आउट हो गई थी, एंड ऑब्वियसली शूटिंग फिर से शुरू हुई। दैट्स हाउ हम ये फिल्म जो है इन दोनों के बीच की वो देख भी पाए थे, इश्क, वन ऑफ द फनीएस्ट फिल्म्स ऑफ दैट टाइम। वैसे जूही की आमिर और शाहरुख दोनों के ही साथ में पेयरिंग काफी पॉपुलर थी, जिसके लिए उन्हें काफी सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले थे। लेकिन शाहरुख खान के साथ जब ये डुप्लीकेट फिल्म की शूटिंग कर रही थी प्राग में, उस समय शूटिंग के दौरान जूही चावला ने अपनी माँ को खो दिया था और उन्हें वापस इंडिया आना पड़ा था। काफ़ी हैवी लॉसेस हुए थे इस फिल्म के प्रोडक्शन टीम को, क्योंकि शूटिंग रोक दी गई थी। और सबसे ज़्यादा अगर किसी पर इस चीज़ का फ़र्क पड़ा था तो वो शाहरुख खान थे, क्योंकि शाहरुख ने खुद कह दिया था कि जो भी लॉसेज हैं वो मेरी फीस में से काट दो, लेकिन इस फिल्म को जारी रखो। I think that is why he's the king of Bollywood. But anyway, जूही चावला की बात हो ही रही है, 90s की एक बहुत ही बेहतरीन दीवा, तो जूही चावला और शाहरुख खान की ही फिल्म डर से सुपरहिट गाना आपको सुनाती हूँ, उदित नारायण और अलका याग्निक जी की आवाज में। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो, मैं रुचि आपके साथ।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर मैं हूं रुचि आपके साथ। 90s की मोस्ट ऑफ द एक्ट्रेसेस डांस में अव्वल थी। अगर माधुरी और जूही कथक ट्रेन डांसर्स थे तो मनीषा कोइराला भरतनाट्यम और मणिपुरी ट्रेन डांसर। मनीषा अपनी टाइमलेस क्लासिक ब्यूटी और एलिगेंस के लिए पॉपुलर थी। एक्टिंग के पहले उन्हें डॉक्टर बनने की चाहत थी, लेकिन बहुत सारी मॉडलिंग जॉब्स ने उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे खोल दिए। मनीषा ने बॉलीवुड के साथ साथ नेपाली, तमिल, मलयालम, तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है। उनका बॉलीवुड डेब्यू हुआ था 1991 की फिल्म सौदागर के साथ में, और वो उस साल की टॉप ग्रॉसिंग फिल्म थी। वैसे शादी से पहले मनीषा वॉज क्वाइट पॉपुलर फॉर हर टर्बुलेंट अफेयर्स। इनफैक्ट अपने सौदागर फिल्म के को स्टार विवेक मुश्रान के साथ अफेयर की खबरें भी इनके सामने आई थी, लेकिन बाद में इन दोनों का ये जो अफेयर था ये

ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया। लेकिन क्या आपको पता है, मनीषा कोइराला अपने जमाने की सबसे ज्यादा कमिटमेंट फोबिक एक्ट्रेस मानी जाती हैं। बहुत डर लगता था इन्हें रिलेशनशिप्स में घुसने से, चाहे ये अपनी रियल लाइफ में ऐसी थी, लेकिन फिल्मों में तो इन्होंने काफी रोमांटिक रोल्स भी निभाए हैं। फिलहाल मैं आपको मनीषा कोइराला की उस फिल्म से गाना सुनाती हूँ जिसे वो ऑलमोस्ट खो चुकी थी। मैं बात कर रही हूँ 1942 लव स्टोरी की। इस फिल्म के स्क्रीन टेस्ट में मनीषा फेल हो गई थी, लेकिन उन्होंने विधु विनोद चोपड़ा जी से काफी रिक्वेस्ट करके दूसरा स्क्रीन टेस्ट करवाया था और तब जाकर वो सिलेक्ट हुई थी। आई मीन आई कैन नॉट इवन इमेजिन दिस फिल्म विदाउट मनीषा कोइराला। चलिए कुमार सानू की आवाज में ये गाना, सेलिब्रेटिंग 90s की डीवा मनीषा कोइराला, वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर। मैं रुचि आपके साथ।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। 90s की डिवास के बारे में आज हम इस एपिसोड में बात कर रहे हैं, और जब 90s की कुछ खूबसूरत एक्ट्रेसेस की बात हो, डिवास की बात हो और ऐश्वर्या राय की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐश्वर्या इज अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन इन द वर्ल्ड। हम दिल दे चुके, सनम, गुरु, देवदास जैसी फिल्मों से उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है। अपनी पर्सनल, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस किया जाए, इस चीज का भी एक एग्जाम्पल उन्होंने सभी एक्ट्रेसेस, नॉट जस्ट एक्ट्रेसेस एक्चुअली, सभी लड़कियों के लिए सेट किया है। लेकिन क्या आप ऐश्वर्या की एजलेस ब्यूटी का राज जानते हैं? चाहे वो कितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स इंडोर्स क्यों ना करती हों, लेकिन ऐश्वर्या राय आज तक भी सिर्फ आयुर्वेदिक ऑयल्स का इस्तेमाल करती हैं अपने चेहरे पर। वैसे ऐश्वर्या खुद भी एक डॉक्टर ही बनना चाहती थी। उनका बचपन से सपना था कि या तो वो डॉक्टर बने या फिर एक आर्किटेक्ट बने। बताओ बचपन में हम क्या क्या सपने देखते हैं और बड़े होकर के क्या बन जाते हैं। वैसे जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। सोचिए अगर ऐश्वर्या राय डॉक्टर बनती और आप ऐश्वर्या राय के पास में जाते पेशेंट बन करके, तो आप तो अपना दिल दे करके आ जाते वहां पर, तो अलग दिल के मरीज बन जाते आप, चाहे कोई और बीमारी लेकर के गए होते। एनीवे, ऐश्वर्या राय की बात यहाँ पर हो रही है तो और प्यार हो गया फिल्म से उदित नारायण जी का गाना सुनाती हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये गाना लेकर के आई हूँ। मेरे डिजिटल ऑडियो प्लेयर सारेगामा कारवां से है ये गाना। सुनिएगा वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर।

कुमार शानू जी गायक किशोर कुमार को अपना आदर्श मानते थे। शानू जी ने गायकी में अपना खुद का एक अलग अंदाज बनाए रखा हुआ है, इसीलिए आज भी उनके चाहने वाले उनके गानों को सुनकर अपना दिल थाम लेते हैं। उनको पहला ब्रेक जगजीत सिंह ने दिया था, उन्होंने ही शानू जी को कल्याण जी आनंद जी से मिलवाया था। 1989 में आई फिल्म जादूगर के लिए कुमार शानू ने एक गीत भी गाया था। क्या आपको पता है कि एक दिन में 28 यानी कि 28 गाने रिकॉर्ड करवाने वाले वह एकमात्र गायक है? हाँ, ऐसा शायद कभी किसी ने नहीं किया था। उन्होंने 20,000 गाने गाए हैं। कुमार शानू का आज के दौर में संगीत के बारे में कहना है कि आज के संगीत से मेलोडी, सुर, ताल आदि कहीं गुम हो जा रहा है और उसकी जगह शोर ले रहा है। और अगर जहाँ पे मेलोडी गानों की बातें हो रही है, वहाँ पे ये गाना सुनना तो बनता है। ये गाना है साजन फिल्म का, मेरा दिल भी कितना पागल है। आई नो मैं इतनी अच्छी सिंगर नहीं, पर शानू जी तो बेहद ही अच्छे सिंगर है। तो चलो ये गाना सुन लेते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि इस गाने के लिए भी उनको फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। चलो सुनते हैं, मेरा दिल भी कितना पागल है।

कुमार शानू जी मानते हैं कि आज के संगीत में मेलोडी सुरताल कहीं गुम हो रहे हैं और उसकी जगह शोर ले रहा है। यदि यही वजह है कि आज के अधिकतर गीत यादगार प्रतीत नहीं होते, उनकी चाहत हमेशा रही कि काश उन्होंने सचिन देव बर्मन के साथ कोई गाना गाया होता। बहुत समय से वह बंगाली फिल्मों में सक्रिय है और हिंदी फिल्मों में कम। 2009 में उनके अभूतपूर्व संगीत योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था और देश के चौथे सबसे सम्मानित नागरिक के तौर पर मनोनीत भी हुए। फिल्म राउडी राठौर में गीत चमक छल्लो छल छबीली के साथ दोबारा वापसी की। फिर सन 2014 में रिलीज यशराज फिल्म निर्मित दम लगा के हैशा फिल्म में गीत दर्द करारा गाया। और जैसे कि आपको पता है, ये फिल्म का ये सॉन्ग बेहद ही मस्त, जैसा लगता नहीं कि पुराने गाने और पुराना माहौल जैसे फिर से जिंदा हो गया। तो ये गाना तो सुनना बनता है नहीं, तो चलो सुन लेते हैं दम लगा के हैशा फिल्म से दर्द करारा सॉन्ग, जिसको गाया है कुमार शानू जी ने।

कुमार शानू को अधिकतर 1919 के दशक की फिल्मों में दिए गए पार्श्व गायन के लिए जाना जाता है। इसमें फिल्म जुर्म कैसे भूल सकते हैं, जिसका गाना आज भी कोई भी मैरिज पार्टी हो, मैरिज फंक्शन हो या तो प्राइवेट वैलेंटाइन पार्टी हो, इसमें ज़रूर बजाया जाता है। कुछ ऐसे गाने नहीं होते जो भले ही पुराने हो जाए लेकिन दिल के बेहद ही करीब रहते हैं। उनका उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसा ही एक गाना है जुर्म फिल्म से, जब कोई बात बिगड़ जाए। ये गाना जब आया था तब से लेकर अब तक की जनरेशन को बेहद ही पसंदीदा है। आप ये गाना हर बार सुनते होंगे। जब ये गाना बजता है तो दिल में कुछ कुछ ज़रूर होता है। तो चलो हम आगे यही सॉन्ग आपको सुना देते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। इस सॉन्ग के बाद हम वापस से यही मिलेंगे। रेडियो पालमपुर 90.4 FM विथ आरजे अंजलि।

आगे आपने ये सॉन्ग सुना, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सॉन्ग से अगर तुम अपने दिल की बात शेयर किसी से ना कर सको तो सिर्फ ये सॉन्ग बजा देना। आई नो कि सामने वाला इंसान आपकी बात ज़रूर समझ जाएगा। जब कोई बात बिगड़ जाए सॉन्ग से उनको बहुत सारी सफलता मिली, लेकिन उनको सुपरस्टार बना दिया आशिकी फिल्म के गानों ने। इस फिल्म से उन्होंने शुरुआत कर लगातार 5 सालों तक 1991 से लेकर 1995 तक फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार जीता, जो कि एक कीर्तिमान है। उन्होंने उस समय के लगभग सभी संगीतकार के लिए गीत गाए हैं। और अब यहाँ पे अगर आशिकी मूवी की बात हो रही है, आशिकी मूवी से जब कुमार शानू जी सुपरस्टार बन गए तो उसी मूवी का एक गाना तो बनता है ना। चलो तो आशिकी मूवी का ये गाना सुन लेते हैं, अब तेरे बिन। आई नो कि मैं उस जमाने से नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि जब ये गाना आया होगा ना, तब लोग अपने दिल की बात इसी गाने से जाहिर करते होंगे, क्योंकि इस मूवी में इतने सारे गाने हैं और सारे के सारे आपको आपकी लाइफ से रिलेटेड ज़रूर होंगे। तो चलो आज हम ये गाना सुन लेते हैं, अब तेरे बिन, और उसके बाद वापस से मिलेंगे रेडियो पालमपुर 90.4 FM विथ आरजे अंजलि के साथ।

वैसे तो कुमार शानू जी ने उस समय के लगभग सभी संगीतकार के लिए गीत गाए हैं, जैसे कि आनंद मिलिंद, जतिन ललित और अनु मलिक। लेकिन वो नदीम श्रवण है जिनके साथ उनकी सफलता की शुरुआत हुई और उन्हें सर्वाधिक कामयाबी प्राप्त हुई। हाँ, मैंने आपको जो भी सॉन्ग अभी सुनाए, अब तेरे बिन सोचेंगे तुम्हें प्यार, मेरा दिल भी कितना पागल है, इस तीनों सॉन्ग में संगीत निर्देशक किया है नदीम श्रवण जी ने। क्या आपको ये पता है कि 2000 में आई हुई हम दिल दे चुके सनम मूवी में गाए हुए एक सॉन्ग की वजह से उनको अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार मिला था। और इस मूवी का वो सॉन्ग था आंखों की गुस्ताखिया। हाँ, वही गुस्ताखिया जहाँ पे सलमान खान और ऐश्वर्या राय आंखों से बड़ी ही गुस्ताखिया कर रहे हैं। अगर इस गाने की बात हो रही है तो आई नो कि आपको ये गाना सुनने का बहुत ही दिल हो रहा

होगा। कोई नहीं, रेडियो पे आपके लिए ये सॉन्ग जरूर बजेगा। इस सॉन्ग के बाद हम फिर से मिलेंगे ओनली ऑन रेडियो पालमपुर 90.4 FM विथ आरजे अंजलि।

कुमार शानू जी ने वैसे तो अपने संगीत करियर में बहुत सारे गाने गाए, सोनी म्यूजिक के लिए, टी सीरीज के लिए, टिप्स और सारेगामा के लिए, लेकिन आपने ये गाना जरूर सुना होगा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, वापस से मैं कह देती हूँ कि आई नो कि मैं सुर की इतनी अच्छी नहीं हूँ, पर ये गाना कभी भी बजता है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप किसी और दौर में पहुंच गए हैं, लाइक सपनों की दुनिया में कहीं खो गए हैं। 1942 में लव स्टोरी मूवी आई थी और इस मूवी में संगीत निर्देशक किया था आर.डी. बर्मन जी ने, हाँ, और जिसमें ये सॉन्ग लिखा था जावेद अख्तर जी ने, इसको गाया था कुमार शानू जी ने। जब भी ये गाना बजता है ना तो आज भी यंग जनरेशन एकदम झूम जाती है, हर कभी भी अगर उनको प्यार होता है ना तो ये गाना ज़रूर सुनते हैं कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। और इस गाने को सुनने के बाद यार पता नहीं कि कौन सी दुनिया में पहुंच जाते हैं। अब मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही हूँ इस गाने के बारे में, तो आई नो कि आपको भी ये गाना सुनना होगा, तो चलो सुन ही लेते हैं ये गाना, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा।

अब मेरा जाने का समय हो चुका है। हाँ, समय तो हो चुका है। और आज तो कुंवर शानू जी के सॉन्ग सुनकर मेरा दिल झूम रहा है। दिल धड़कन धड़कन, पता है ना, धड़कन एकदम जोरों से धड़कने लगी है। अगर धड़कन की बात हो रही है तो फिल्म धड़कन का ये सॉन्ग तो आपने सुना होगा ना। तुम दिल के धड़कन में, हाँ हाँ हाँ, यही सॉन्ग। ये सॉन्ग भी गाया है कुमार शानू जी ने। अब मैं जा ही रही हूँ तो आपको ये सॉन्ग तो मैं ज़रूर सुनाऊंगी, क्योंकि फिल्म धड़कन से अगर ये सॉन्ग नहीं सुना कुमार शानू जी का तो क्या ही सुना। चलो इस सॉन्ग को सुन लो। नेक्स्ट टाइम यानी कि नेक्स्ट वीक मैं आपसे ज़रूर मिलूंगी, ओनली ऑन रेडियो पालमपुर 90.4 FM पर। चलो मस्त रहना, व्यस्त रहना और सुनते रहना रेडियो पालमपुर।

नेट हो या ना हो, रेडियो तो बजता रहेगा आपके दिल की धड़कनों में, और इसे धड़कते रखेंगे हम, यानी कि रेडियो पालमपुर 90.4 FM। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर 90.4 FM।

तुम क्यों उदास हो, तुम क्यों परेशान हो? जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है? समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। मैं हूं आपकी आरजे रुचा। मस्त रहे, व्यस्त रहे, सुनते रहे रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

नेट हो या ना हो, रेडियो तो बजता रहेगा आपके दिल की धड़कनों में, और इसे धड़कते रखेंगे हम, यानी कि रेडियो पालमपुर 90.4 FM। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर 90.4 FM।

0: तो करने का भी है।
1: आ योजना थी तमारू घर साचा अर्थ मा सूर्य घर बनी जशे, एटले के लाइट बिल साव जीरो। इतलू ज नहीं, जो जरूरियात करता वधु विजुली पैदा थशे तो तमे तेने ग्रीड मा वेचीने वधारानी कमाणी पण करी शकशो। तो पछी राश एनी जुओ छो, आजेज रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।